जवानी के दिनों में इश्क कर लो, तुम इसके बाद में कुछ और करना। ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, मेरी आदत नहीं थी शोर करना। ये दुनिया दोस्तों सुनती है ऊंचा, मेरी आदत नहीं थी शोर करना। मैं सबके सामने तुमको न देखूं, मैं सबके सामने तुमको न देखूं, तू सबके सामने इग्नोर करना। मैं सबके सामने तुझको न देखूं, तू सबके सामने इग्नोर करना। जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, कभी फुर्सत मिले तो गौर करना। जमाना है बुरा या हम बुरे हैं, कभी फुर्सत मिले तो गौर करना। वो जरा सा इश्क करके देख पहले, जरा सा इश्क करके देख पहले, अगर अच्छा लगे तो और करना। जरा सा इश्क करके देख पहले, अगर अच्छा लगे तो और करना। खुदा के हाथ में है कामयाबी, खुदा के हाथ में है कामयाबी, हमें है कोशिशें पुरजोर करना। खुदा के हाथ में है कामयाबी, हमें है कोशिशें पुरजोर करना। और एक गज़ल से चंद शेर यूं भी कहे के हमारे साथ ये अक्सर हुआ है, हमारे साथ ये अक्सर हुआ है कि पहला वार ही दिल पर हुआ है। हमारे साथ ये अक्सर हुआ है कि पहला वार ही दिल पर हुआ है। बना वो दोस्त से हमदर्द मेरा, फिर उसके बाद में दिलबर हुआ है। बना वो दोस्त से हमदर्द मेरा, फिर उसके बाद में दिलबर हुआ है। वो किताबत का हुनर हाथों में पैदा, किताबत का हुनर हाथों में पैदा, तुम्हारा नाम लिख लिख कर हुआ है। किताबत का हुनर हाथों में पैदा, तुम्हारा नाम लिख लिख कर हुआ है। और शेर के बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, जो घर होते हुए बेघर हुआ है। बताओ जाएगा वो अब कहाँ पर, जो घर होते हुए बेघर हुआ है। वो आया आ गया आ ही गया अब, वो आया आ गया आ ही गया अब, हमारे साथ ये दिन भर हुआ है। वो आया आ गया आ ही गया अब, हमारे साथ ये दिन भर हुआ है। और ये शेर के मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, बड़ी मुश्किल से मेरा घर हुआ है। मुझे खाना बदोशी छोड़ दे अब, बड़ी मुश्किल से मेरा घर हुआ है। और दोस्तों ये गज़ल से कुछ शेर यूं भी के उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है। उसे हमारी खबर नहीं है ये सच नहीं है, इधर है जो कुछ उधर नहीं है ये सच नहीं है। और ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नज़र नहीं है ये सच नहीं है। ज़माना उलझा हुआ है खुद में ये सच है लेकिन, किसी की हम पर नज़र नहीं है ये सच नहीं है। और तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है। तुम्हें है जिद्दत पसंद ये है तुम्हारी मर्जी, रिवायतों में असर नहीं है ये सच नहीं है। और एक गज़ल से दो तीन शेर यूं भी कहे के अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, दुश्मने जहाँ पे पलटवार करो प्यार करो, अपने लहजे को ना तलवार करो प्यार करो, दुश्मने जहाँ पे पलटवार करो प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे अपना ऐसा मियाँ किरदार करो प्यार करो, तुमसे मिलने की हर एक शख्स तमन्ना ही करे अपना ऐसा मियाँ किरदार करो प्यार करो। तुम हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, तुम हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो प्यार करो,

तुम्हो इंसान मोहब्बत है तुम्हारी फितरत, अपने जज्बात का इजहार करो प्यार करो। और एक गजल से कुछ ये के शेर के, हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, ये आफ्ताब मुसलसल सफर में रहता है। हमेशा गर्दिशे शामो शहर में रहता है, ये आफ्ताब मुसलसल सफर में रहता है। वो समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है। समर भी फूल भी पत्ते हवा भी साया भी, खुदा का एक करिश्मा शजर में रहता है। जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफर में रहता है। जो दिख रहा है वही देखते हो तुम तो बस, तुम्हें खबर नहीं क्या क्या सफर में रहता है। और एक गजल से कुछ शेर यूं भी के, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। रब से उम्मीद लगाता हूँ खसारा करके, वही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। वो सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके। सब बता देते तुम्हें इश्क किसे कहते हैं, तुमने देखा ही नहीं जिक्र हमारा करके। वो तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके। तेरे हाथों में हूँ जो चाहे बना दे मुझको, खुद को रखा है तेरी चाक पे गारा करके। वो कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके। कहकशां देखने आना कभी हुजरे में मेरे, मैंने रखा है चरागों को सितारा करके। और शेर आखिर

0: वो ही बिगड़ी को बनाता है इशारा करके। और एक गज़ल से कुछ शेर यूं भी कहें कि तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, अजीब शख्स है फिरता है दर बदर फिर भी, तमाम शहर के दिल में है उसका घर फिर भी, अजीब शख्स है फिरता है दर बदर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, तेरे बगैर तो एक पल भी जीना मुश्किल था, तेरे बगैर मगर हो गई बसर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी, जहाँ यकीन हो पुख्ता वहाँ नहीं होंगे कोई भी हीला बहाना अगर मगर फिर भी। और शेर आखिर, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी, हमारे बाद भी होगा जहाँ में इश्क मियाँ, मगर ये सच है कि रह जाएगी कसर फिर भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामईन, अभी आपने जनाब फाजिल खान का खूबसूरत कलाम समाअत फरमाया। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ रिश्ता को इजाज़त दीजिए। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है निवाड़ी जिले की चिट्ठी, आलेख प्रादेशिक समाचार एकांश, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे की। कल डॉ. यादव ने निवाड़ी जिले में करीब 193 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने निवाड़ी को प्रदेश की अयोध्या बताते हुए कहा कि ओरछा में भगवान राम के राम राजा लोक का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रिमोट के जरिए नवनिर्मित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। निवाड़ी दौरे के दौरान वे ओरछा भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राम राजा सरकार मंदिर में दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक स्तर पर जिले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में नवागत एसडीएम विनीता जैन ने क्षेत्र के सभी पटवारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री शत प्रतिशत पूरी करने, सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों का त्वरित निराकरण करने, सीमांकन और बंटवारे के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर जमुना भिड़े ने पिछली साप्ताहिक जनसुनवाई में प्राप्त 80 आवेदनों पर सुनवाई की। उन्होंने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, भूमि कब्जे से जुड़े मामलों में अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर जांच पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी एक और खबर है। नवागत अपर कलेक्टर और अपर जिला दंडाधिकारी इकबाल मोहम्मद ने कलेक्टर कार्यालय में पदभार ग्रहण

किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए निवाड़ी तिगैला स्थित पुरानी मंडी परिसर के अस्थायी बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अमले ने जेसीबी की मदद से अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबरों की बात करें तो जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने 45 नौ चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की है। जिला शिक्षा अधिकारी और उन्मेष श्रीवास्तव ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें प्राथमिक स्तर पर खेल और संगीत के 3 शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 42 शिक्षक शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रोहित शुक्ला ने लड़वारी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और झुकियाई के शासकीय हाई स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लड़वारी विद्यालय में अवकाश प्रक्रिया में लापरवाही पर प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया। रोजगार के क्षेत्र में जिले के शासकीय पीजी कॉलेज में युवा संगम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 220 आवेदकों ने हिस्सा लिया। इनमें से 115 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया, जबकि 2 आवेदकों का अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ। नगर विकास से जुड़ी खबर में नगर परिषद अध्यक्ष नीलू केशव खटीक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी ने वार्ड क्रमांक 5 और 6 में डोर टू डोर भ्रमण कर पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने नागरिकों से जल आपूर्ति, पानी के प्रेशर और स्वच्छता की भी जानकारी ली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से दस्तक अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत स्वास्थ्य दल घर घर पहुंचकर 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में संभावित हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी संवेदनशील जल स्रोतों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नदियों, तालाबों, बांधों और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहाँ चेतावनी बोर्ड, फेंसिंग और बैरिकेडिंग लगाने के लिए कहा गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जनजागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शासकीय पीएमश्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों ने सहभागिता की। अधिकारियों को कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक निस्तारण, बल्क वेस्ट जनरेटर की जिम्मेदारी तय करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में उद्योग, सेवा, कृषि आधारित परियोजना, एग्रो प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री धनधान्य योजना के तहत पात्र किसान ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

माँ भारती के गौरवगान की डेढ़ सदी को हम हर्षित प्रफुल्लित मन से मना रहे हैं। मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा, सम्मान और नमन के भाव वंदे मातरम में गुथे हुए हैं। एक ऐसा नारा वंदे मातरम जिसके स्वर गुंजन से हर भारतवासी स्वयमेव ही देश की माटी का रक्षक स्वयं को अनुभूत करता है। श्रोताओ, संस्कृत और बांग्ला भाषा के शब्द पुष्पों में गुमफित बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी रचना वंदे मातरम, जिसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, ये सिर्फ एक काव्य रचना सिद्ध नहीं हुई बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शक्तिशाली नारा बन गई, जिसने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया अपना सर्वस्व अपनी भारत माता के चरणों में समर्पित करने के लिए। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इस राष्ट्रगीत के प्रथम गायक थे।

उन्होंने ही सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया था। अपने 150 सालों के सफर में वंदे मातरम गीत राष्ट्र की आत्मा बन चुका है। इसकी धुन और बोल हर देशवासी के हृदय में राष्ट्र प्रेम का अमृत घोल देने वाली प्रेरक शक्ति है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है विश्व दर्पण। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। और भारत ने हरारे में तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के अंतर्गत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था। और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन अपने हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाट्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।
3: ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के हमलों से बचाव के लिए उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उधर ईरान ने इलाके में हमले रोक दिए हैं। हाल ही में तनाव तब शुरू हुआ था जब ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों पक्षों ने रोजाना एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरानी हमलों में जॉर्डन में 3 और इराक में 1 की सैनिक की मौत हुई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
1: ईरान ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में वाणिज्यिक पोत पर कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4: इब्राहिम अजीजी की यह टिप्पणी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची के आरोप के बाद आई है। उन्होंने यूक्रेन पर ईरानी जलपोत पर हमले का आरोप लगाया था, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। सैयद अब्बास अराग्ची ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमले का आदेश दिया था। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे संधि का उल्लंघन बताते हुए कहा कि ईरान इसका जवाब देगा। ईरान ने इससे पहले तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। यह राजनयिक विरोध व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की की उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर सहित रूस में सैन्य लक्ष्यों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से राजधानी कीव पर हमला किया, जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होरलिवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 300,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
5: दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रांस में ऐतिहासिक शहर बॉर्डरो के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ती आग के कारण लगभग 220,000 लोगों को निकाला गया है। अटलांटिक तट पर स्थित कैंप फेरेट प्रायद्वीप में आग ने भारी तबाही मचाई है। पड़ोसी देश स्पेन में 75,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 30,000 लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 अन्य घायल हुए थे।

0: मृत की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लोट के तौर पर हुई है। हमले के बाद लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। अब्दुल ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने का प्रयास भी किया था। जर्मनी के गृहमंत्री ने इस घटना को संदिग्ध आतंकी हमला बताया। ये हमला शनिवार रात पार्क के पास उत्सव के समापन समारोह के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है।
1: मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलो वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही भारत टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को हराकर पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि प्रीति पवार ने मलावी की देबोरा मतेंजे पर जीत हासिल कर महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई है। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। पैरा पावर लिफ्टिंग झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों की विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 4 हुई। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक मिला। और भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:20 हुए हैं। वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा का। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी फिल्मी गीतों की फरमाइशों को लेकर, आपके खतों को लेकर। सारिका नायक, आप सभी को हमारा नमस्कार। और आइए शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइश आप तक पहुंचाने की। पहली फरमाइश महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे की हम तक आई है। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और इन्होंने सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। बेर्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवा सेरे। आप सभी सुनना चाहते हैं राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों का गाया गीत। बोल हैं हसरत जयपुरी के संगीतकार हैं रविंद्र।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। हमारा ये सुरीला प्रसारण आप तक पहुंच रहा है न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए भी। बने रहिए हमारे साथ ही इस सफर में। फिल्म चांदनी, लता मंगेशकर और साथियों की एक बार फिर आवाज़ें इस गीत के जरिए आप तक पहुंचेंगी। शिवहरी का मधुर संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल हैं और ये फरमाइश सारंगा में लिख भेजी है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने। अभिजीत गवहानकर राही, सरिता गवहानकर, सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहानकर, वैशाली गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर परी, प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, इन्होंने अपना फरमाइशी ख़त हमें भेजा है कंवर कॉलोनी बड़वाह से। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का फरमाइशी ख़त हमें मिला है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया का फरमाइशी ख़त भी हमारे पास आया है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो चलिए इन सभी की फरमाइश आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म चांदनी का ये गीत अब सुनवाते हैं।

इस सुरीले सफर में आप हैं हमारे साथ मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से चल रहे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सारंगा, और जहां हो रही हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइश पूरी। हमारे अगले जो श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइशी ख़त हमें भेजा है, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक, प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, गड़िया मौजे उस्तू से इनका ये खत हमें मिला है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन सभी ने सुनना चाहा है फिल्म जानवर का गीत। अलका याग्निक, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और

सुखविंदर सिंह की आवाज़ें हैं और ये गीत हमारी श्रोताओं की फरमाइश है, उन तक हम पहुंचा रहे हैं।

सुन रहे हैं मीडियम वेव पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, ये बोल हैं फिल्म साजन के गीत के, जिन्हें लिखा समीर ने, नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने गाया है अलका याग्निक के साथ। और इस गीत को सुनना चाहा है, अपनी फरमाइश हम तक भेजी है पिपरिया लिंगा से अरविंद चढ़ार, अक्षतम चढ़ार, आचमन चढ़ार, शिखा चढ़ार ने। लक्ष्मण रेकवार, विनीता रेकवार, वैशाली वैष्णवी, दीपेश लल्लू हल्ले, ऋषि रेकवार और इनके परिवार के सदस्यों ने। बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल बढ़ई, सुजीत बर्मन, फिरन यादव, अफजल खान, सुनील सिंह ठाकुर और इनके साथ साथ सभी ग्रामवासियों ने ये फरमाइश भेजी है, ऐसा इन्होंने अपने ख़त में लिख भेजा है। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले, सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, छत्तीसगढ़ के हमारे ये सभी श्रोता, बेमेतरा के हमारे ये श्रोता। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे, शिवम शुभांगी और सृष्टि गद्रे का फरमाइशी खत भी हमें मिला है। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने सुनना चाहा है अपनी फरमाइश को, तो लीजिए उन तक पहुंचाते हैं ये फरमाइश।

कुंदनगर खरगोन से ध्रुवा सोनवड़े, सुनीता सोनावड़े, खुशी सोनावड़े, प्रियांश सोनावड़े, आशीष सोनावड़े, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनावड़े। मगरलोड छत्तीसगढ़ से पुनूराम साहू, तेजश्वरी साहू, राजश्री, राजवीर साहू। जरूड़ वरूड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी चंद्रप्रभा वाड़ोदे, इन सभी ने अपना फरमाइशी ख़त भेजा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से भी हमें फरमाइश भेजी गई है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर ने हमें ख़त के ज़रिए अपनी फरमाइश भेजी है। रामचंद माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार, इन सभी ने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है।

तो चलिए इनकी फरमाइश पूरी करते हैं और आप सबको सुनवाते हैं इनकी फरमाइश पर फिल्म सलामी का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें, नदीम श्रवण का संगीत, बोल समीर के।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत न्यूज़ हेडलाइंस अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

0: रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना माधवगढ़ी का गायन, राग था तोड़ी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों का जनक बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इसे केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्ते। एक बात आज मैं कहना चाहूंगी कि ना कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा, ना कोई दिखावा होता है। दोस्तों से मुलाकात का मंजर ही सबसे जुदा होता है। खुलकर हम हंस लेते हैं, जी लेते हैं, दुख बांट लेते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की हर बात। जी, आपका नाम?
3: राजवान विश्वकर्मा।
2: जी, फोन करें गीत सुने इसमें आपका फोन लगा हुआ है। और कैसे हैं आप बताएं?
3: हम ग्लाइंड पीरियड में चल रहे हैं मैडम जी, क्या बताएं।
2: जी जी जी जी, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप हमारा जो रेडियो सुनते हैं प्रोग्राम सारे इसके।
3: जी जी जी।
2: गीत संगीत का शौक है आपको?
3: बहुत बहुत कुछ, आज कम से कम 40 वर्ष से।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनते हैं गीत संगीत, आपको रुचि है इसमें?
3: जी।
2: चलिए तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
3: आंदोलन फिल्म का है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं भी तू जरा बता।
2: ठीक है, एक और मूवी बता दीजिए आप हमें जिसका गीत सुनना चाहेंगे।
3: एक है जीवन युद्ध का।
2: जी,
3: जीवन युद्ध।
2: जी जी बिल्कुल, तो इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। और आपने फोन किया। जी जी,
3: लोग टुकुर टुकुर देखेंगे बजरिया में।
2: जी, बड़ा प्यारा सा गाना आपने पसंद किया है और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, फोन करें गीत सुने।
0: जी आपका नाम बताएं।
1: जी मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: जी आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। बताइए कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आपका शुभ नाम।
0: जी मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: ओहो श्वेता जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। बताइए कैसा मौसम है उधर का, छतरपुर का, बारिश हो रही है?
1: छतरपुर का श्वेता जी बहुत बढ़िया मौसम है। पानी अभी शाम के भी गिरा है और अभी सवेरे तो बादल है, अभी तो नहीं गिरा है लेकिन शाम के बहुत अच्छी बारिश भाई। और लगभग लगभग बहुत अच्छा मौसम है और बहुत बढ़िया खेती किसानी भी बढ़िया है।
0: हाँ खेती किसानी भी अच्छी हो रही है।
1: हाँ लेकिन हाँ। बस इतना है कि जो तला तालाब है वो भर नहीं भर पा रहा, बाकी किसानी के हिसाब का तो पानी बहुत अच्छा बरस रहा है।
0: अभी तो और बरसेगा पानी, है ना?
1: जी,
0: बहुत अच्छे
1: अभी
0: से
1: तो
0: बारिश
1: बहुत
0: होगी।
1: बाकी
0: बिल्कुल
1: है, अभी तो अभी 4-6 नक्षत्र मघा नक्षत्र भी बाकी है, अभी सुरेखा है।
0: जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: बिल्कुल श्वेता जी, फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल और
0: जी
1: गीत के बोल हैं कि चाहत से है बेगानी मेरी सुबह शाम, मेरे दिल के कोरे कागज पे नहीं लिखा है कोई नाम।
0: बिल्कुल। तो ये प्यारा सा गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
1: और श्वेता जी साथ अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ हमारे मित्र हैं उनका नाम बोल लूं।
0: हाँ बोलिए
1: जी सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा गीत, और हमारे प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मणिराम पाल जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और हमारे चित्रकूट धाम से दिनकर सिंह जी हैं, और कानपुर से पूनम बहन है हमारी, पूनम जी
0: जी जी
1: और हमारे जयपाल यादव जी हैं महोबा से। सारे जितने श्रोता माता है बहन श्रोता है सभी को ये डेडिकेट रहेगा, और ये गीत लगभग पहली बार बज रहा होगा शायद आपकी
0: जी
1: आकाशवाणी से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी बहन प्रणाम नमस्कार।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: जी मैं राजू यादव बुंदेलखंड हमीरपुर से।
0: जी तो कैसे हैं आप बताएं।
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं और बगीचे में बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, सभी लोगों को इस तरह रहना चाहिए, है ना, मस्त व्यस्त अपने कामों में, है ना।
1: जी बहन जी जी
0: तो बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: बहना जी, एक मूवी का नाम रहेगा रंग।
0: रंग, जी
1: रंग मूवी का कोई
0: हाँ
1: भी गीत चलेगा बहन।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम यही चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें और साथ ही साथ हमारे गानों को और रेडियो सेट के प्रोग्रामों को भी सुनें।
1: जी बहन मैं राजू यादव ग्राम उपरह का श्रीरामपुर डेरा
0: जी जी जी
1: राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड से कुछ मित्रों को नाम ले लें बहन।
0: बताइए आपके मित्रों के नाम।
1: हमारे मित्र हैं लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, गौतम राय भोले जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, बलवान सिंह यादव हैं, छोटे यादव हैं और अनुप कुमार राजपूत जी हैं।
0: जी तो इन सभी को भी मेरा बहुत नमस्कार और आपने फोन किया और हमसे बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताएं आपका।
1: दीदी हम ग्राम पुष्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह नागर
1: नागल जी दीदी
0: जी, तो बताएं आप कैसे हैं।
1: बिल्कुल बढ़िया हैं और बस आकाशवाणी का बचपन से शौक है रेडियो सुनने का।
0: अच्छा,
1: और जो आप लोगों की बातचीत रहती है सुझाव देते हैं आप लोग, हम बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम सुनते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है रेडियो पर?
1: देखिए आपके कार्यक्रम एक तो जो फोन करें गीत सुने आप तो जो भी हम सुन ले, और भी अन्य भी कार्यक्रम आते हैं तो समय समय पे हम सब कार्यक्रम सुनते हैं।
0: चलिए, हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतनी ध्यान से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन गीत के बोल हैं, तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई बरसातों में।
0: फिल्म का नाम एक और बताएं आप, इसका बताएं।
1: चलिए
0: एक और बताइए मूवी का नाम।
1: चलो तो फिर फिल्म का नाम है,
0: नहीं आप
1: अपने फिल्म का सुनवा दें दीदी आप।
0: नहीं आप बताइए आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहें।
1: नहीं तो निगाहें का सुनवा दो आप।
0: निगाहें का, चलिए
1: जी। गीत के बोले सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कब करोगे।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया इसके लिए।
1: मौसम कैसा है?
0: अच्छा है मौसम, बारिश भी हो रही है और काफी खुशनुमा हो गया मौसम। जी, आपके इधर भी बारिश हो रही है?
1: हमारे इधर तो बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, चलिए हम यही कामना करते हैं कि आपके इधर भी खुशनुमा मौसम हो जाए। आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कौन दीदी बात कर रही हैं आप?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: जी श्वेता दीदी, आपकी बातचीत को देते हैं तो हम लोग भरपूर आनंद भी लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपने फोन किया इसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: जी नमस्ते। कार्यक्रम
1: नमस्ते। जी, नमस्ते।
0: फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका। नाम बताएं।
1: मैं सुरान पाल से गुर्जर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे
0: आपकी
1: हैं।
0: जगह का नाम बताएं।
1: ग्राम बाबूपुरा,
0: जी
1: तहसील को, जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जालौन से। जी तो बताएं, रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ, सुनते हैं, बहुत पहले से सुनते हैं।
0: जी, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: गोपी का सुनवा दीजिए, रामचंद्र
0: जी, गोपी का कौन सा गीत?
1: कहेगा इस यार से।
0: बड़ा प्यारा सा ये कह ले
1: जी,
0: भजन है। क्या करते हैं आप?
1: मैं शिक्षक हूँ। जी,
0: जी, टीचर हैं आप? अच्छा,
1: हाँ
0: चलिए, तो आप रेडियो भी सुनते हैं अपने काम के साथ साथ, ये जानकर हमें खुशी हुई।
1: सुन लेते, समय मिल जाता है।
0: जी, खुशी हुई हमें ये जानकर, और आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉ कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भारत रत्न डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में डॉ कलाम का अद्वितीय योगदान अविस्मरणीय रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि CRPF ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। खंडवा में आज नई कृषि उपज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव किसानों से संवाद करेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर ने भगवान महाकाल के दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश कार्यक्रम। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनवाते हैं मीरा का मोहन फिल्म से ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खुरैसी राम सखी, परमानंद सौरव गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्य। नांदगेड़ी से लिखने वाले हैं प्रभाकर और आरती। आप सभी ने सुनना चाहा है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी फिल्म का नगमा, आवाज़ें अशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं। गीत है राजेंद्र किशन का, तस बनाई मदन मोहन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं इंदौर से अनिल, नेहा, सबीहा, कमल, पूरन, सुषमा और स्मिता। सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है साथी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने नवाब आरजू के बोल हैं और नदीम श्रवण ने इसकी तर्ज बनाई।

बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमरा गांव से वसीमुल्ला अंसारी और असमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, खातून अंसारी असमा और गुलफराज भागलपुरी, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है फिदा फिल्म का नगमा, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीत समीर का, तर्ज अनु मलिक की।

शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और इनकी परिवार के सदस्य, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू और मोहित नागर, आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज़ों में हाथी मेरे साथी फिल्म का नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलाने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोकर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह संदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने

0: वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण प्रति सोमवार दोपहर 1 बजे।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
3: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी का एकांतरिक धारावाहिक का 12वां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी का एकांतरिक की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी का एकांतरिक के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 12वां भाग। अब तक आपने सुना कि चंद्रसेन की अवंती में वैसिका से भेंट होती है। वो उसकी सादगी और बुद्धि से प्रभावित होकर उसे बहन बना लेता है। चंद्रसेन आश्रम जाकर भेषज्ञ त्रिलोचन को वैसिका के बारे में विस्तार से बताता है। अब आगे

उज्जैनी से लौटा चंद्रसेन कुछ खिन्न था और कुछ प्रसन्न। खिन्न इसीलिए कि ठीक से उज्जैनी का दर्शन नहीं कर पाया। उसने देखा कि राजधानी में कहीं अवकाश ही नहीं है, जिसे देखो वही व्यस्त। कहीं धन पद वैभव के लिए प्रतियोगिता है, तो कहीं पेट को भरने की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य नट विट भाट बन गया है। सुरा और सुंदरी का ऐसा निर्बाध विनिमय उसकी कल्पना से बाहर था। महामात्य के व्यवहार से वो प्रसन्न था और वैसिका के बंधु होने से आत्मगर्वित। एक दिन अवसर पाकर चंद्रसेन ने पूछ ही लिया।

0: आर्य त्रिलोचन, एक बात पूछनी है।
1: एक ही क्यों, दो तीन जितनी चाहे पूछिए, पर औषधि शोधन की गति मंद ना पड़े।
0: आपकी मुखाकृति वैशिका दीदी से बहुत साम्य रखती है।
1: कौन वैशिका?
0: बताया तो था आपको, वही जिन्हें मैंने उज्जैनी में अपनी दीदी माना है।
1: ओ हाँ, बताया तो था तुमने।
0: वे औचक मेरा मुंह देखती रही और फिर पूछा, तुम्हारे भेषज्ञ क्या दक्षिणत्य हैं?
1: फिर तुमने क्या कहा?
0: मैंने कहा, हमारे आश्रम में कोई किसी की कुल जाति आदि नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं जानता। किंतु उन्होंने आग्रह किया कि आपसे पूछूं कि क्या आप दक्षिण देश से हैं और कलाधर हैं? यदि वे भी हैं तो क्या आपके बाएं कपोल पर किसी घाव का चिन्ह है? अरे आर्य, आपको क्या हुआ? आप स्वस्थ तो है ना आचार्य?
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: तुम्हारी दीदी की वह क्या होगी?
0: आश्चर्य आचार्य, वैशिका दीदी ने भी आपकी वह पूछी थी। निश्चित तो नहीं, 25 बरस के आसपास होगी।
2: चंद्रसेन,
0: आचार्य
2: मुझे तुरंत उज्जैनी जाना होगा।
0: आचार्य क्यों आचार्य?
2: मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वैशिका दीदी ही मेरी सत्या दीदी है।
0: आचार्य ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
2: देखो, मेरे बाएं कपोल पर क्षत्य का चिन्ह है।
0: अरे हाँ,
2: दीदी के साथ खेलते हुए एक वृक्ष के सूखी टहनी से मेरा कपोल छिल गया था।
0: अच्छा,
2: चिन्ह रह गया।
0: हाँ,
2: मैं दक्षिणत्य हूँ।
0: अरे
2: कलापरी की कोख से जन्म लिया है मैंने। हाँ। और गोदावरी की जल यात्रा में मेरा सब कुछ छिन गया था।
0: क्या वैशिका दीदी ने ये सब क्यों पूछा?
2: गोदावरी में हमारी नाव पर दस्यु आक्रमण हुआ था, हमारे सेवकों की हत्या करके दस्यु ने माँ की हत्या कर दी। मुझे गोदावरी में धकेल कर उन नौका का अपहरण करके ले गए। मैंने उन गिद्धों को माँ की मृत देह से आभूषण नोचते देखा है।
0: धैर्य रखिए,
2: मुझसे हतभागा कौन होगा? उस नौका पर मेरी सत्या दीदी थी। मुझे न जाने क्यों लगता है कि तुम्हारी वैशिका दीदी मेरी सत्या दीदी है। मैं घड़ी दो घड़ी में निकलता हूँ चंद्र।
0: आचार्य मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे वहां कई लोग पहचानते हैं। महामात्य, वैशिका दीदी, देवी वसुंधरा और स्यात महादेवी पिंगला भी। आपकी भेंट सुगम हो सकेगी।
1: नहीं, यहाँ तुम्हारे बिना सब कार्य रुक जाएगा।
0: लेकिन आचार्य,
1: मेरे पीछे तुम औषधि वितरण और सामान्य उपचार का दायित्व देखते रहना, मैं निकलता हूँ।
0: ठीक है आचार्य।

0: आचार्य त्रिलोचन उज्जैनी पहुँचते हैं। वो सीधे महालय पहुँचते हैं और प्रहरी को परिचय देते हैं।
1: मेरा नाम त्रिलोचन है, सेवाश्रम का भेषज्ञ हूँ। 3 सप्ताह पहले मेरे सहयोगी चंद्रसेन यहाँ अश्वनी मणि को लेकर आए थे, मुझे देवी वैसिका से भेंट करनी।
2: मान्यवर, राजमहालय में प्रवेश केवल महामात्य के अनुमति पत्र से ही संभव है। हम विवश हैं कि आपको प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूं सूचना थे कि वैसिका देवी कल ही महादेवी के संग किसी यात्रा पर जा चुकी हैं।
1: कब तक लौटेंगी?
2: महादेवी के यात्रा कार्यक्रमों की जानकारी अमात्यों और आस्पदों को भी नहीं होती, और हम ठहरे साधारण सेवक। वह आज भी लौट सकती है और कल भी, या अखबारे पखवारे में भी, सब अनिश्चित है।
1: और कहां से जानकारी मिलेगी?
2: मान्यवर, हमें क्षमा करें।
1: अच्छा, ये तो बता सकेंगे कि यहाँ एक चिकित्सक मृगांक दत्त रहते हैं, मेरे सहपाठी हैं। आप उनके आवास आदि की जानकारी दे सकेंगे?
2: जी जी, अवश्य मानव। श्रीमान मृगांक दत्त उज्जैनी के सुविख्यात चिकित्सक हैं। आप यहाँ से निकलकर दक्षिणी मार्ग लें, आगे एक तिरपत आएगा, वहाँ बाएं मुड़कर चलें। कुछ ही दूरी पर उनका आवास और चिकित्सालय है।

0: आप किसी से भी पूछ लें, धन्वंतरी कुंज।
1: हर कर्तव्य पे, हर अचरज पे, हर हर निकाह।
2: सचमुच दर्शनीय है ये मानक। कनकशल का उज्जैन वैभव और ऐश्वर्य तो सर्वत्र बिखरा पड़ा है, किंतु संभवतः ये वास्तव चित्र भी हो, कुछ ऐसा हो जो अदृश्य हो। किसी ने कहा भी है कि हर वैभव के नीचे कोई हाहाकार दबा होता है। द्विपथ पर चलते चलते पर्याप्त देर किसी से पूछ तो लूं कि विख्यात चिकित्सक मृगांक तक कहाँ निवास करते हैं।
3: अरे बंधु ठहरिए।
4: जी मैं
3: हाँ यहाँ धन्वंतरी कुंज
4: धन्वंतरी कुंज अर्थात चिकित्सक महाशय का आवास।
3: हाँ हाँ वही विशेषज्ञ मृगांक दत्त रहते हैं।
4: किंतु आप तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।
3: मैंने आपसे मार्ग की जानकारी चाहिए।
4: आप तो बुरा मान गए। क्षमा करें, मैंने तो इसलिए पूछा था कि यदि आप औषधि या उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपका जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि धन्वंतरी कुंज में केवल श्रेष्ठियों और श्रीमंतों के उपचार का स्थान है।
3: तो मृगांक दत्त निर्धन वंचितों का उपचार नहीं करते?
4: अरे निर्धन वहाँ पहुँचेगा ही क्यों, उनका उपचार इतना व्यय साध्य है कि श्रमिक और कृषक उपचार के स्थान पर मृत्यु को वरण्य मान लेते हैं। अरे नहीं नहीं भ्रम में ना पड़िएगा, और भ्रम में पड़े भी क्यों ना आप, बाहर से आए प्रतीत होते हैं। अरे राजधानी में भ्रम ना पाले जाए तो उसे राजधानी कौन कहेगा? और मुझे क्या करना, चार आवाज छोड़कर सीधे चले जाइए, धन्वंतरी के कुंज में पहुंच जाएंगे। भीड़ होगी वहां, रथ और शिविकाओं का रोगग्रस्त संकुल पहचान लेंगे आप।
3: लगता है बंधु तुम किसी कारणवश मृगांक से रुष्ट हो। कुछ बातें रोचक हैं तुम्हारी, तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है, कभी अवसर आए तो अवश्य।
4: मैं नहीं मिलूंगा, मुझे आप में कोई रुचि नहीं है। मैं चला
3: चला गया। विचित्र जीव है वो, असंतुष्ट, संभवतः अपने आप से भी असंतुष्ट। ऐसे लोग भी होते हैं। भीड़ से भरा आवास आ गया, संभवतः मृगांक यहीं मिले।
5: अरे अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो भाई?
3: मृगांक दत्त से मिलना है।
5: उपचार का समय समाप्त हुआ, कल प्रातः काल आना और अपना कर्मांक अंकित करवाना।
3: उपचार के लिए नहीं, भेंट के लिए आया हूँ, सहपाठी मित्र हूँ मृगांक का।
5: अन्यथा ना ले महोदय, मैं तो आज्ञा पालक अनुचर मात्र हूँ, स्वामी के अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं है यहाँ।
3: और अनुमति कौन देगा? इन प्रवेश करने वाले लोगों को तुम रोक नहीं रहे, इनका ऐश्वर्य तुम्हारे कर्तव्य पालन में बाधक है, यही बात है ना? अस तुम मेरे आने की सूचना मृगांक को जाकर दो, या मैं वैसे ही प्रवेश करूं, तुम मुझे रोक ना पाओगे बंधु। हाँ यदि मृगांक मिलना ना चाहे तो अलग बात है।
5: देव आप इस कक्ष में जाकर विश्राम करें, मैं उनको खबर देता हूं।
6: त्रिलोचन अंदर कक्ष में जाकर ऊंचे स्वर में पूछते हैं,
3: श्रीमान मृगांक कहाँ है?
7: अरे दुष्ट त्रिलोचन, वर्षों से अता पता नहीं आज आकाश से टपक पड़े अचानक। मैंने तो सोचा था कि कोई यक्षिणी तुम्हें उठाकर ले गई है। इधर बैठ शुभंकर
5: जी।
7: तुम अतिथि कक्ष की व्यवस्था करो और बाकी के रोगियों को देख लो, मैं अब अवकाश लूंगा
5: जी।
7: मेरा बिछड़ा हुआ मित्र युगों बाद मुझे मिला है।

0: त्रिलोचन, तुम आए हो तो कुछ दिन रुको भी। वैसे भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे बल प्रयोगी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे अपशब्द तो मेरे लिए नए नहीं है, और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं उतना ही नैतिक हूँ जितना आवरण के लिए आवश्यक है।
1: जानता हूँ।
0: बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि स्मृतियों के पृष्ठ उलटूं और खोजूं कि कहाँ है मृगांक।
1: यह तुम कह रहे हो मृगांक? आश्चर्य है, तुमने तो 2 वर्षों की अवधि में ही ये सब वैभव, इतना सम्मान पा लिया है। तुम परम सुखी हो, तुम्हें कैसा क्लेश?
0: सभी बातें होंगी मित्र, तुम यहाँ कुछ दिन रुक जाओ बस। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में जो विरक्ति, जो व्यंग है, उसके संग थोड़ी सी प्रतीति मुझे मिल जाए। तुम मेरे अनन्य और एकमात्र मित्र हो त्रिलोचन, सहपाठी। संसार में हमने साथ साथ अनुभव के गवाक्ष खोले थे, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? अच्छा ये तो बताओ कि उज्जैनी आने का तुम्हारा हेतु क्या है? इतना तो मैं जानता हूँ कि महाकाल के दर्शन करने तो तुम आए नहीं, और मेरे आवास तक पहुँचने की कृपा की तो वो भी मैत्री की उमंग में नहीं हुई होगी। फिर भी तुम जो चाहो, भ्रमण, वास, विलास या मेरा उपहास, करते रहना स्वतंत्रता पूर्वक। यहाँ रहोगे तो देखोगे कि जीवन से मैंने बंधना तो सीख लिया है, तथापि मैं नीच नहीं हुआ हूँ।
1: निश्चय ही तुम्हारे पास आने में मेरा स्वार्थ है मृगांक। स्वार्थ ना होता तो उज्जैन आता ही क्यों? आकर भी संभव है कि तुमसे मिले बिना लौट जाता, पर यह मिलन भी अच्छा ही रहा। तुम्हारी जो छवि मेरे मन में बनी थी, वो इस मिलन के बाद कुछ कुछ टूट रही है।
0: छवि तो एक मुखौटा है मित्र, मैं तुम्हें केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि अवंतिका राज्य धर्म और व्यापार का केंद्र है। तीनों यहाँ अपने उत्कृष्ट और निकृष्ट स्तर पर विद्यमान है। यहाँ निकृष्ट को परिष्कृत करके उत्कृष्ट के समकक्ष खड़े कर देना ही कौशल समझा जाता है, जिसके लिए असत्य का आश्रय लेना ही पड़ता है मित्र। इसलिए अनित्य, असत्य, सत्याभास यहाँ के प्रभु वर्ग की जीवन शैली में आ गए हैं। महाकाल का घंटा और भी वेग से बजता है, प्रार्थना के स्वर ऊंचे और ऊंचे होते जाते हैं। ये अवंतिका है मित्र। लेकिन तुम्हारे लिए आश्रम ही उचित स्थान है। तुम्हें सही स्थान पर ले जाकर पटका है देव ने कि पट्टियां बदलते रहो और कुष्ठ रोगियों, उन्मादियों, लूले लगनों का उपचार करते रहो।
1: देखूंगा, तुम्हारी उज्जैनी भी देखूंगा। सांध कर्म से निवृत्त हो लूं, फिर जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। अपने आने का हेतु भी तो तुम्हें बताना है।

0: दोनों मित्र उज्जैनी की वीथियों में रथ पर सवार होकर घूम रहे हैं।
1: हम जा कहां रहे हैं मृगांक?
2: आए हो तो उज्जैनी का दर्शन भी कर लो मित्र, प्रारंभ महाकाल से।
1: आज स्नान नहीं कर पाया हूँ, वस्त्र भी मलिन है, शुचिता का ध्यान भी तो रखना होगा।
2: फिर शिप्रा के इन घाटों की शोभा देखो मित्र, देखो तटवर्ती स्तंभ दीप जल में यूं प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे एक समानांतर उच्च से आलोक प्रस्फुटित हो रहा हो। कितनी सुंदरियां दीप दान के लिए यहाँ पर पंक्ति वक्त खड़ी है, पता नहीं चलता कि दीप की दीप्ति उनके मुख पर है अथवा मुख से ही दीप्ति प्रकट हो रही है। ये उज्जैनी के श्रीमानों का घाट है, अभी कुछ देर में यहाँ रसिक समूह एकत्र होंगे, सुंदरियों में अपनी प्रेसी की कल्पना करेंगे और उन पर प्रणय पुष्प लीचेंगे। ये अवंती के शरदोत्सव का पूर्वाभ्यास है मित्र।
1: सचमुच मन भावन है ये दृश्य, किंतु मुझे सेवा आश्रम की स्मृति हो आई। वहां निर्धन विपन्न अशक्त रोगियों को छोड़कर आया हूँ, अधिक समय नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारी इस अवंती में।

0: मैंने तुम्हें कहा था अवंती केंद्रीय नगर है, राज वाणिक और धर्म तीनों का केंद्र, किंतु समय नहीं है किसी के पास त्रिलोचन। सब कुछ है, समय नहीं। तुम जिससे भेंट करना चाहो वह अपनी व्यस्तता के कारण उपलब्ध नहीं होता। यहाँ अपना समय साथ रखना होता है मित्र, अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है। महामात और महाभोग की नगरी है, यहाँ महाकाल हैं, यहाँ महामाया भी हैं, महाराज महारानी महामात्य महास्पद यही हैं, महासेन महाबलाधिकृत महाश्रेष्ठी महापंडित महानायिका और महाधूर्त और महालंपट भी, इनसे महानगर उज्जैनी की संरचना होती है मित्र। लो अब हम तुम्हारी उज्जैनी नगरी में पहुंच गए।
1: उनका रथ अब श्रमिक वर्ग की नगरी से निकल रहा होता है।
0: सखा त्रिलोचन, ये भी उज्जैनी है किंतु ये कनक श्रृंगा नहीं है। यहाँ अनुचर किंकर दास कुलेक और हस्तिका बसते हैं। नदी तट पर जलते हुए चूल्हों की उठती हुई आग को देखते हो? वहाँ भुने हुए मांस की गंध से कुछ सुनने का प्रयास करो। अनेक कहानियां तुम सुन सकोगे। इस गंध में पसीना भी है और विवशता भी। मद की गंध और पथ के इधर उधर ग्राहक के साथ विनिमय के लिए प्रस्तुत रूप जीवाओं का सौंदर्य भी, यदि तुम उन्हें सुंदर कह सको तो।
2: ये मुझे कहां ले आए मृगांक? यहां तो सांस लेने में भी कष्ट है, ये तो नरक है नरक।
0: मित्र, इसी नरक से चलकर मैं उस धनवंतरी कुंज तक पहुंचा हूँ। और त्रिलोचन, यहां मैं अब कभी वापस नहीं लौटना चाहता।

0: त्रिलोचन, राजधानी के दोनों चेहरे तुमने देख लिए, अब कहाँ चले बताओ?
1: आवासी लोग चले, मुझे और कुछ देखने की रुचि नहीं रही। मृगान, तुम्हारा आना जाना राजप्रासाद में तो होता ही होगा।
0: हाँ, उत्सवों आयोजनों के अवसर पर मिलता रहता है, चिकित्सा के लिए जाने का अवसर कभी नहीं मिला।
1: अच्छा, मुझे ये ज्ञात करके बताओ कि महारानी पिंगला कहाँ गई हैं और वो कब तक लौटेंगी?
0: ओ, महारानी से भेंट करना है, सीधी छलांग लगा रहे हो मित्र। वैसे मैंने सुना है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञातवास पर है और महारानी भी वहीं चली गई हैं। ज्ञात करने में कुछ समय तो लगेगा। मेरी एक रोगिणी है जिसका आना जाना अंतापुर में है, सुनते हैं कि वो महारानी के साथ चौसर खेलती है।
1: तो कल तक ज्ञात कर सकोगे? मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु इस संबंध में जानकारी मेरे लिए तुरंत आवश्यक है।
0: कब तक ठहर सकते हो मित्र?
1: सूचना मिल जाने तक, किंतु 2-4 दिन बस।
0: मैं कल प्रयास करता हूँ महादेवी के संबंध में जानकारी जुटाने का। पूछा इसलिए कि राजा और राज परिवार के आसपास सया से एक रहस्य का वातावरण बुन दिया जाता है। सामान्य चीजें भी रहस्य में लपेट दी जाती हैं और अत्यंत गोपनीय विषय जानबूझकर प्रचारित किए जाते हैं। वैसे सुना है अवंती राज परिवार के रहस्य ठीक ठीक बस 3 ही व्यक्ति जानते हैं।
1: कौन है वो?
0: महामात्य पूर्णरथ, अंतेवास का कंचुकी प्रमुख और पिछले वर्ष से चर्चा में आई एक दासी। कहा जाता है कि अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की है वो। राजा भर्तृहरि, रानी प्रिंगला और महामात उसकी सलाह का सम्मान करते हैं। उस दासी का नाम है वयसिका।
1: तुमने वयसिका को देखा है मृगांक?
0: सार्वजनिक उत्सवों में दासियों को पराया अलग ही रखा जाता है। मैंने उसके कारण पर बहुत सोचा और मुझे लगता है कि कुछ दासियां अपनी स्वामिनियों से अधिक सुदर्शना और सुसंस्कृत होती हैं। अहम टूटता होगा उनका। वैसे मित्र, मैंने दूर से वयस्का को देखा है, सुंदर है, वय भी कम है। मेरा आशा है अपनी स्वामिनी महारानी पिंगला से।
1: तुम मुझे वयस्का से ही मिलवा दो मृगांक।
0: हाँ, ये अपेक्षाकृत सुगम होगा। लेकिन मित्र, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्यों मिलना चाहते हो महारानी से या वयस्का से। तुमने मुझे कोई कारण भी नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा।

दूसरे दिन मृगांक को ये सूचना मिल गई कि महारानी पिंगला किसी बड़े अनुष्ठान के लिए गुप्तवास में है। वैसिका भी उनके साथ ही गई है। वो दोनों कहाँ हैं ये बात चंपा भी नहीं जानती। केवल महामात्य पूर्ण रथ को उसका अनुमान है और राजा भर्तृहरि भी राजधानी में नहीं है। संभवतः वो भी अज्ञातवास पर कहीं निकल गए हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 12वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार चेतना भारद्वाज, चंद्रसेन बद्रवास्ती, त्रिलोचन उबैदुल्ला खां, प्रहरी मनोज राजानी, व्यक्ति भागीरथ साहू, द्वारपाल वकार हुसैन और मृगांक बालेंद्र सिंह, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय से निकल जाते हैं। रानी पिंगला को राजगुरु देवश्री ध्यान लगाकर बताते हैं कि राजा दक्षिण दिशा में हैं, वाहन और अस्त्र के बिना। व्यथित होकर रानी पिंगला राजा की वापसी के लिए कठिन अनुष्ठान का निर्णय करती है। इस प्रसंग से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

कामिनी काय कांतारे, इसकी 12वीं कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं।

ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों से अपना जुड़ाव मजबूत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताया। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। प्रदेश की ई प्रवेश प्रणाली ने उच्च शिक्षा में प्रवेश का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 जुलाई तक प्रदेश के कॉलेजों में करीब 4,80,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने चंबल ग्वालियर अंचल में तैनात 14 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को हटाकर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जिंदगी बदल रही है, जिससे हमारी आदतें बदल रही हैं और साथ ही बदल रहा है हमारा जीने का तरीका। श्रोताओं, आज हमारी हथेली में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम ज्ञान भी वहाँ लेते हैं, काम भी करते हैं, मनोरंजन भी वहीं ढूंढते हैं और अपनों से भी जुड़ते हैं वहीं। लेकिन श्रोताओं, सुविधा और आवश्यकता के बीच ये स्क्रीन अनजाने में हमसे बहुत कुछ छीन भी रही है। ये हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है। श्रोताओं, आज का समय तकनीक से दूरी बनाने का नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने का है, क्योंकि जब तकनीक समझदारी के साथ अपनाई जाती है तभी वह जीवन को बेहतर बनाती है। यदि तकनीक का असंतुलित उपयोग किया जाए तो इससे कई समस्याएँ होती हैं। श्रोताओं, लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन, सिरदर्द, गर्दन और कमर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। कई लोग तो रात में भी देर तक स्क्रीन देखते रहते हैं, जिससे शरीर का प्राकृतिक नींद का चक्र प्रभावित होता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, याददाश्त और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। श्रोताओं, इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें छोटी छोटी आदतों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या को अधिक संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान हम बना सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने के बजाय हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कमरे की रोशनी को संतुलित रखें। मोबाइल, कंप्यूटर का उपयोग करते समय सही पोस्चर में बैठे, गर्दन को झुकाकर लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग ना करें। यदि आपका काम लंबे समय तक स्क्रीन पर होता है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा टहले, शरीर को स्ट्रेच करें और पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीते रहें। सोने से एक घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग ना करें और सबसे जरूरी, जब परिवार के साथ हो, भोजन कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तब भी मोबाइल का उपयोग ना करें। यानी जब स्क्रीन की जरूरत हो तभी उसका उपयोग करें और हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के भी अपने लिए निकालें। श्रोताओं, जिंदगी सिर्फ स्क्रीन के साथ नहीं, उसके बाद भी बेहद खूबसूरत है। कभी अपनों के साथ खुलकर हंसिए, कभी उगते सूरज को देखें, कभी पेड़ों की छांव में कुछ पल बिताएं और बिना किसी नोटिफिकेशन के अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करिए।